0: मुजफ्फर को महाबत अपनी जिस कदर इसके मुकद्दर में है सब मिल जाए।
1: आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على

0: उनका हाल उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ ही पेशतर अपने कामों की सजा का मजा चख चुके हैं और अभी उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है।
1: كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا

0: कह दो कि मौत जिससे तुम गुरेज करते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले खुदा की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो जो कुछ तुम करते रहे हो वो तुम्हें सब बताएगा।
1: या

0: उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना रखा है और उनके जरिए से लोगों को राह खुदा से रोक रहे हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं।
1: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون।
0: ये इसलिए कि ये पहले तो ईमान लाए फिर काफिर हो गए तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई सो अब ये समझते ही नहीं।
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ

0: वही तो है जिसने तुमको पैदा किया, फिर कोई तुम में काफिर है और कोई मोमिन, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देखता है।
1: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير।
0: उसी ने आसमानों और जमीन को मबनी बर हिकमत पैदा किया और उसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी पाकीजा बनाई और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है।
1: يعلم

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6
2: امتی میں سے اللہ کیوں آ گئے

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: अस्सलामु अलैकुम खवातीन हजरात, प्रोग्राम हयात तय्यबा की 38वीं नशस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, पिछली नशस्त में माले गनीमत और कैदियों के मसले का तस्करा हो रहा था, आज हम उसी सिलसिले को मजीद आगे लेकर चलेंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चचेरे भाई और कुंबे कबीले के लोग हैं, मेरी राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फिदिया ले लें, इस तरह जो कुछ हम लेंगे वो कफार के खिलाफ हमारी कुव्वत का जरिया होगा और ये भी मतवक्के है कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे और वो हमारे बाजू बन जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने खत्ताब, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा, वल्लाह मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, मेरी राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां को, जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का करीबी था, मेरे हवाले करें और मैं उसकी गर्दन मार दूं। अकील बिन अबी तालिब को अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मारें, और फलां को, जो हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु का भाई है, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करें और वो उसकी गर्दन मार दें, यहां तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिलों में मुशरिकीन के लिए नर्म गोशा नहीं है और ये हजरात मुशरिकीन के सनादीद और दाइमा और कायदीन हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात पसंद फरमाई और मेरी बात पसंद नहीं फरमाई, चुनाचे कैदियों से फिदिया लेना तय कर लिया। उसके बाद जब अगला दिन आया तो मैं सुबह ही सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और वो दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएं आप और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे भी रोने की वजह मिली तो रोऊंगा, अगर ना मिल सकी तो आप हजरात के रोने की वजह से रोऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिदिया कबूल करने की वजह से तुम्हारे असहाब पर जो चीज पेश की गई है उसकी वजह से रो रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करीब ही दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझ पर उनका अजाब इस दरख्त से भी ज्यादा करीब पेश किया गया है। और अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं है कि उसके पास कैदी हो, यहाँ तक कि वो जमीन में अच्छी तरह खूरेजी ही कर ले। तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है, और अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से नौशिस्ता सबक ना कर चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ किया है उस पर तुमको सख्त अजाब पकड़ लेता। और अल्लाह की तरफ से जो नश्ता सबकत कर चुका था वो ये था, यानी मुशरिकीन को जंग में कैद करने के बाद या तो एहसान करो या फिदिया ले लो। चूँकि इस नौशते में कैदियों से फिदिया लेने की इजाज़त दी गई है, इसलिए सहाबाए कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को कबूल फिदिया पर सजा नहीं दी गई बल्कि सिर्फ सरजनिश की गई, और ये भी इसलिए कि उन्होंने कफ्फार को अच्छी तरह कुचलने से पहले कैदी बना लिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने ऐसे ऐसे मुजरमीन जंग से फिदिया लेना कबूल कर लिया था जो सिर्फ जंगी कैदी थे, बल्कि जंग के ऐसे अकाबिर मुजरमीन थे जिन्हें जदीद कानून भी मुकदमा चलाए बगैर नहीं छोड़ता और जिनके मुतालिक मुकदमा का फैसला अमूमन सजाए मौत या उम्र कैद की सूरत में नमूदार होता है। बहरहाल चूँकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुशरिकीन से फिदिया ले लिया गया। फिदिये की मकदार 4,000 और 3,000 दिरहम से लेकर 1,000 दिरहम तक थी। अहले मक्का लिखना पढ़ना भी जानते थे जबकि अहले मदीना लिखने पढ़ने से वाकिफ ना थे, इसलिए ये भी तय किया गया कि जिसके पास फिदिया ना हो वो मदीने के 10-10 बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखा दे, जब ये बच्चे अच्छी तरह सीख जाएं तो यही इसका फिदिया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई कैदियों पर एहसान भी फरमाया और उन्हें फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया। इस फहरिस्त में मुतलिब बिन हंतिब, सैफी बिन अबी राफिया, اور ابو العزا حجمی کے نام آتے ہیں. آخر اس ذکر کو آئندہ جنگ احد میں قید اور قتل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد اور ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ نہ روکیں گے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا جس میں ایک ہار بھی تھا. یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اور جب انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو العاص کے پاس رخصت کیا تھا تو یہ ہار انہیں دے دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں. صحابہ نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ چھوڑ دیں گے. چنانچہ حضرت ابو العاص نے ان کا راستہ چھوڑ دیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یا جج میں رہنا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس سے گزریں تو ساتھ ہو لینا. یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ واپس آئے. حضرت زینب کی ہجرت کا واقعہ بڑا طویل اور المناک ہے. قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو بڑا زبان آور اور خطیب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سہیل بن عمرو کے اگلے دو دانت تڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جائے کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ گزارش مسترد کر دی، کیونکہ یہ مسئلے کے زمن میں آتا ہے جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا. حضرت سعد بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کیا. ابو سفیان کا بیٹا عمرو بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا. چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا اور اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا. سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر چلیں گے.
2: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP کی دنیا. UCP کی دنیا. UCP کی دنیا.

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। इसी गजवे के ताल्लुक से सूरह अनफाल नाजिल हुई, जो दर हकीकत इस गजवे पर एक खुदाई तबसरा है। अगर ये ताबीर सही हो और ये तबसरा बादशाहों और कमांडरों वगैरह के फातिहाना तबसरों से बिल्कुल ही जुदा गाना है। इस तबसरे की चंद बातें मुख्तसरन ये हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों की नज़र उन कोताहियों और इखलाकी कमजोरियों की तरफ मबजूल कराई जो उनकी फिल जुमला बाकी रह गई थी और जिनमें से बाज का इजहार इस मौके पर हो गया था। इस तवज्जो दहानी का मकसूद ये था कि मुसलमान अपने आप को इन कमजोरियों से पाक साफ करके कामिल तरीन बन जाएं। इसके बाद इस फतह में अल्लाह ताला की जो ताईद और गैबी मदद शामिल थी उसका जिक्र फरमाया। इसका मकसूद ये था कि मुसलमान अपनी शुजात और बसालत के फरेब में ना आ जाएं, जिसके नतीजे में मिजाज और तबा पर गुरूर और तकबर का तसल्लुत हो जाता है। बिल्कुल वो अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और उसके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में रहें। फिर उन बुलंद अगराज़ो मकासद का तस्करा किया गया जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक और खूरेज मार्के में कदम रखा था और इसी जमन में इन इखलाक़ो साफ की निशानदेही की गई जो

में इम्तियाज कायम हो जाए और इखलाक व किरदार के मैदान में मुसलमानों को बढ़तरी हासिल रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले के इस्लाम महज एक नजरिया नहीं है बल्कि वो जिन उसूलों और जाब्तों का दाई है उनके मुताबिक अपने मानने वालों को अमली तरबियत भी करता है। फिर इस्लामी हुकूमत के कवानीन की कई दफात बयान की गई हैं, जिनसे वाजे होता है कि इस्लामी हुकूमत के दायरे में बसने वाले मुसलमानों और इस दायरे से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या फर्क है। 6 हिजरी में रमजान का रोजा और सदका फितर फर्ज किया गया और जकात के मुख्तलिफ निसाबों की तफसीलन तायुन किया गया। सदका फितर की फर्जियत और जकात के निसाब की तायुन से इस बोझ और मुशक्कत में बड़ी कमी आ गई, जिससे फुकरा मुहाजरीन की एक बड़ी तादाद दो चार थी, क्योंकि वो तलबे रिजक के लिए जमीन में दौड़ धूप के इम्कानात से महरूम थे। फिर नहायत नफीस मौका और खुशगवार इत्तफाक ये था कि मुसलमानों ने अपनी जिंदगी में पहली ईद जो मनाई वो शवाल 6 की ईद थी, जो जंगे बदर की फतेह मुबीन के बाद पेश आई। कितनी खुशगवार थी ये ईद सईद, जिसकी सआदत अल्लाह ताला ने मुसलमानों के सर पर फतह और इज्जत का ताज रखने के बाद अता फरमाई, और कितना ईमान अफरोज था इस नमाज ईद का मंजर, जिसे मुसलमानों ने अपने घरों से निकलकर तकबीर तौहीद और तमहीद और तस्बीह की आवाजें बुलंद करते हुए मैदान में जाकर अदा किया था। उस वक्त हालत ये थी कि मुसलमानों के दिल अल्लाह की दी हुई नेमतों और उसकी की हुई ताईद के सबब उसकी रहमत और रिजवान के शौक से लबरेज और उसकी तरफ रगबत के जज्बात से मामूर थे और उनकी पेशानियां उसके शुक्र की अदायगी के लिए झुकी हुई थी। अल्लाह ताला ने इस नेमत का जिक्र इस आयत में फरमाया है, और याद करो जब तुम थोड़े थे जमीन में कमजोर बना कर रखे गए थे, डरते थे कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, बस उसने तुम्हें ठिकाना रहमत फरमाया और अपनी मदद के जरिए तुम्हारी ताईद की और तुम्हें पाकीजा चीजों से रोजी दी ताकि तुम लोग उसका शुक्र अदा करो। बदर के वाके के बाद जंगी सरगर्मियां। बदर का मार्का मुसलमानों और मुशरिकीन का सबसे पहला मुसल्लह टकराव और फैसला कुन मार्का था, जिसमें मुसलमानों को फतह मुबीन हासिल हुई और सारे अरब ने इसका मुशाहिदा किया। इस मार्के के नताइज से सबसे ज्यादा वही लोग दिल गिरफ्ता थे जिन्हें बराहे रास्त ये नुकसान अजीम बर्दाश्त करना पड़ा था, यानी मुशरिकीन, या वो लोग जो मुसलमानों के गलबा और सरबुलंदी को अपने मजहबी और इक्तसादी वजूद के लिए खतरा महसूस करते थे, यानी यहूद। चुनाचे जब से मुसलमानों ने बदर का मार्का सर किया था, ये दोनों ग्रोह मुसलमानों के खिलाफ गमो गुस्सा और रंजो अलम से जल भुन रहे थे, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तुम अहले ईमान का सबसे जबरदस्त दुश्मन यहूद को पाओगे और मुशरिकीन को। मदीने में कुछ लोग उन दिनों ग्रोहों के हमराज और मसाज थे। उन्होंने जब देखा कि अपना वकार बरकरार रखने की अब कोई सबील बाकी नहीं रह गई तो बजाहिर इस्लाम में दाखिल हो गए। ये अब्दुल्ला बिन उबई और उसके रुफका का ग्रोह था। ये भी मुसलमानों के खिलाफ यहूद और मुशरिकीन से कम कम गुस्सा न रखते थे। उनके अलावा एक चौथा ग्रोह भी था, यानी वो बद्दू जो मदीने के गिर्दो पेश बोदोबाश रखते थे। उन्हें कुफ्रो इस्लाम से कोई दिलचस्पी ना थी, लेकिन ये लुटेरे और रहजन थे, इसलिए बदर की कामयाबी से उन्हें भी कल को इस्तराब था। उन्हें खतरा था कि मदीने में एक ताकतवर हुकूमत कायम हो गई तो उनकी लूट खसूट का रास्ता बंद हो जाएगा, इसलिए उनके दिलों में भी मुसलमानों के खिलाफ कीना जाग उठा और ये भी मुस्लिम दुश्मन हो गए। इस तरह मुसलमान चारों तरफ से खतरे में घिर गए, लेकिन मुसलमानों के सिलसिले में हर फरीक का तर्ज अमल दूसरे से मुख्तलिफ था। हर फरीक ने अपने हस्बे हाल ऐसा तरीका अपनाया था जो उसके ख्याल में उसकी गर्ज़ो गायत की तकमील का कफील था। चुनाचे अहले मदीना ने इस्लाम का इजहार करके दरे पर्दा साजिशों, सीसाकारियों और बाहम लड़ाने भड़ाने की राह अपनाई। यहूद के एक ग्रोह ने खुल्लम खुल्ला रंजो अदावत और गैज़ो गज़ब का मुजाहरा किया। अहले मक्का ने कमर तोड़ ज़र्ब की धमकियां देनी शुरू की और बदला और इंतकाम लेने का खुला ऐलान किया। उनकी जंगी तैयारियां भी खुलेआम हो रही थी, गोया वो जुबाने हाल से मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे थे, एक ऐसा रोशन और ताबनाक दिन जरूरी है जिसके बाद अरसाए दराज तक नोहा करने वालियों के नोहे सुनता रहो और साल भर के बाद
وہ عملاً ایک ایسی مارکہ آرائی کے لیے مدینے کی چار دیواریوں تک

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

लाहौर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: Welcome back, everyone, to FM 92.6 UCP Ki Duniya. Today, I'm here for Faculty Awards, and hamare saath hamari guest hai Miss Aisha Naseem. And we were discussing ke IR ke andar agar hum dekhen to global events ko hum kaise understand kar sakte hain ki hamare aas paas jo kuch ho raha hai usko IR ke view se kaise explain kar sakte hain. Okay, Miss. Next, my question hai ki jaise state mein central government hoti hai, but IR mein koi central authority nahi hai. To decision making kaise hoti hai aur problem को सॉल्व कैसे किया जाता है?
2: अच्छा, सो मुस्कान, दिस इज़ अ वेरी कोर यू नो इशू और टॉपिक इन IR, जो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर जिस चीज़ के साथ ग्रैपल करते हैं और फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि हर प्रॉब्लम, हर इशू को टैकल करने के अंदर ये यही क्वेश्चन जो है ये अराइज करता है. बिकॉज यू आर वेरी राइट कि हमें एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर क्लियर कट एक गवर्नमेंट नज़र आती है जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड व्हेन वी डोंट फॉलो दोज रूल्स तो एक सिस्टम है जो हमें पनिश करता है, यू नो, कोर्ट सिस्टम, एक पुलिस फोर्स एटसेट्रा. बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, IR की एक टर्म है एनआरकी, एंड एनआरकी इज बेसिकली रिफर्स टू दिस फिनोमेना दैट व्हेन देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, यू नो, व्हाट हैपेंस एंड यू नो हाउ डू स्टेट्स इंटरैक्ट. सो आप इसके अंदर देखोगे कि क्लियर कट है कि देयर इज नो अथॉरिटी. यू नो, यू सी स्टेट्स ब्रेकिंग लॉज, एंड यू नो, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसको स्टेट्स ब्रेक भी करती हैं, लेकिन they get away with it and you know some get punished and some don't get punished. So aisa koi universal hame system nahi nazar aa raha jo ki ek local government for example karti hai. And yet despite that hum ye bhi dekhte hain ki cooperation ho rahi hai, kuch cheezon ke andar law of making jo hai wo ho bhi rahi hai aur usko follow bhi kiya ja raha hai. To ye jo collective goods problem hai, ye एक सेंट्रल आइडिया है जो कि IR ने, आप कह लो इकोनॉमिक्स से भी हमने बोरो किया हुआ है. आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द बिगिनिंग कि IR एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. तो जहां पे आप IR के बारे में पूछ रहे थे कि IR क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो IR इंटरडिसिप्लिनरी है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट आइडियाज़ को हम इकोनॉमिक्स से भी बोरो करते हैं, सोशियोलॉजी से बोरो करते हैं, साइकोलॉजी से बोरो करते हैं. वो जो मैं अभी आपको इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस बता रही थी, इट इज़ सो मच लिंक टू साइकोलॉजी एंड psychology of leaders. So coming back to this problem that you just asked about, to wo ek collective goods problem hai jiska ek jiski ek basis economics ke andar bhi hai ki aap kaise ensure karo ki wo cheeze jo sabke fayde mein hai उनको स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो उनको इसके अंदर कुछ स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना भी कर रही हूँ, राइट? जैसे फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल देख लेते हैं. अब आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज, यू नो, बिकॉज इट इज़ सच ए हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड इट इज़ बींग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा. सो इट्स समथिंग दैट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. अब यू नो द एयर दैट वी breathe is for everybody, right? हम वहाँ पर तो वो borders नहीं बना सकते air के अंदर जो हमने land के अंदर बनाए हुए. So it's like every country is going to contribute, you know, with the level of pollutions, etc. तो वो हर country उसके अंदर contribute कर रहे हैं. लेकिन कुछ countries ज़्यादा contribute कर रहे हैं और कुछ countries कम contribute कर रहे हैं. But it is a problem that affects everybody, right? So अगर आप for example कह दो कि नहीं, मैं तो इतनी production नहीं कर रहा, and so I don't need to, you know, do something about it, it's not really there because it is going to affect you. आप पाकिस्तान की example देख लो. अभी ये जो हमारे floods आए थे recent, उसके अंदर हमारा यही एक you know हमारा official narrative था that we have not contributed as much to global warming, but you know these floods have been caused by global warming and we have paid the cost of it, in the sense ke kitni lives lose hui hain, kitni hamari economy suffer ki hai. So yahi baat aagi ke chahe koi state uske andar contribute kar rahi ho, chahe na contribute kar rahi ho, aapne wo provide karna hi hai good, aur aapne ensure karna hai ki sab countries jo hain wo uske andar contribute kare, kyunki it is a global thing. And if for example one state says ke nahi ji hum to नहीं इसको फॉलो करेंगे, तो वही बात है, एयर कॉमन है, इट इज स्टिल गोइंग टू इफेक्ट other people. So how are you going to deal with it? Iske bhi basic principles hain. Hum bahut basic level pe dominance padhte hain. Principle of dominance usko kaha jata hai. Phir principle of reciprocity hai. Principle of, you know, identity hai. Briefly, I'll just mention ki in sab ke andar kya hota hai and then we can move on. Dominance ka principle kehta hai ki jo powerful states hain, wo less powerful states ko, you know, dictate karti hain. So jaise hume, for example, different countries kahein ki you should do something about climate change and because a powerful country is saying it, we will follow it. ठीक है, वो डोमिनेंस हो गई. रेसिप्रोसिटी होगी कि वो हमें दूसरे कंट्रीज को इंसेंटिव दे दें कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे. सो आप हमारी बात माने, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे. सो वो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है कि तुम भी करो ये, तुम ये चीज करो, मैं ये चीज कर रही हूं, तो एंड वी विल कलेक्टिवली, यू नो, बेनिफिट फ्रॉम इट. और देर इज आइडेंटिटी. यू रियलाइज दैट, यू नो, देर इज समथिंग विच यूनाइट्स यू, विच इफेक्ट्स एवरीबडी एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. सो ये प्रिंसिपल्स हमें एट वर्क नजर आते हैं इन एवरीथिंग, in every event, in every issue that is going on. And somehow, one way or the other, in principles ko use karke, hume dunya mein nazar aa raha hai ki states are cooperating and interacting positively on various issues that affect all of them.
1: क्योंकि मैं देखें आपकी बात से मुझे याद आया कि ब्रिक्स में इंडिया, रशिया, ब्राज़ील सब एक साथ मिलके अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक बेटर करने के लिए काम करें. हालांकि चाइना के इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के रशिया से भी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वो अपनी इकोनॉमी बेटर करने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
2: सो दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देयर इज समथिंग व्हिच इज यूनाइटिंग यू, राइट? कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिसको आप फाइंड कर सकते हो और आप फिर यू नो वन स्टेप फॉरवर्ड. अगर हम एक लिबरलिज्म की थियोरी है आईआर के अंदर उसके तरफ आ जाए तो वो यही कहती है कि कंट्रीज का अपना भी फायदा है कि वो आपस में ट्रेड करें, इस तरह की अलायंसेस बनाएं जैसे कि आपने ब्रिक्स की एग्जांपल दी, बिकॉज यू नो इट इज इन एवरीबडीज बेनिफिट. तो अगर आपके कोई एरियाज ऑफ कंटेंशन भी हैं, अगर कोई एरियाज ऐसे भी हैं जिसके अंदर आप क्लैश कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप आपस में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करोगे, ट्रेड करोगे, उसका फायदा आप दोनों को होगा. सो इट्स नॉट अबाउट यू नो हु गेन्स मोस्ट, इट्स जस्ट अबाउट fact that you should look there at the fact that you are gaining from it. So isliye hum apni interest ki baat karte hain ki ye bhi hamari interest mein hai ki hum aapas mein is tarah ke blocks banaye aur trade kare. This is beneficial for individual states that are a part of it.
1: थैंक यू सो मच मिस, आपने बहुत से पॉइंट्स क्लियर कर दिए मेरे भी और आई एम श्योर जो ऑडियंस है उनको भी अच्छे से समझ आ गई होगी. नाउ वी विल टेक अनदर ब्रेक. सुनते रहिए FM 92.6 UCB की.

0: Welcome back everyone. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I have Miss Aisha Naseem with me and we were discussing ke agar state mein koi central authority nahi hai to phir decision making kaise hoti hai, and we had a very insightful discussion. Hume bahut si cheeze clear hui. Now Miss, aapne liberalism ki baat ki thi, so usi se mujhe theories yaad aayi because I have also studied approaches and theories of IR. To aapko kya lagta hai ki kaun si theory most helpful hai understanding today's events?
1: So this is a very relative question, ठीक है? So इसका एक कोई जैसे fixed answer जो है वो नहीं है. So let me think about which theory, for example, I would answer as being most relatable. Why don't you tell me, Muskan, since you just mentioned कि आपने भी theories पढ़ी नहीं है, what is your approach towards different theories that you've studied? And which one do you think is most adequate?
0: Okay, first of all, realism ko bahut zyada relate kiya jata hai anarchy se, aur uske core ideas bhi yahi hain. Phir liberalism, in dono ko dominant samjha jata hai. But jab when I studied constructivism, to tab maine dekha ki wo world ko bilkul objectively nahi dekhta, ekdam different tarike se perceive karta hai. For example, ki agar aapke samne ek chair hai, to constructivist ke according har kisi ka apna opinion hoga ki aapne ek chair dekhi, but jab aap imagine karoge to aap usko different, har koi differently imagine karega, ki koi use moving chair ke taur pe imagine karega, koi classroom chair ke taur pe imagine karega. To ye sirf depend karta hai ki aapne us cheez ko kaise perceive kiya. और इसमें मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे कंट्रीज लाइक जापान और नॉर्वे, वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, हालांकि बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो कहेंगे कि दुनिया में अनार्की है और हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए. बट उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी सेट कर लिया, उनके इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स को लेकर कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स परसीव नहीं करेंगे. आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किसी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, और हमें बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए.
1: अच्छा, बिल्कुल. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थियरी. सो क्रिटिकल थियरी जो है वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक, जैसे आपने शुरू किया कि हम ज़्यादा फोकस करते हैं रियलिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर, एंड इन फैक्ट वी कॉल देम द मेन स्ट्रीम थियरीज. सो वो वही थियरीज हैं जो कि बहुत अरसे से IR का पार्ट हैं, और उनको बहुत अरसे से, मतलब सेंचुरीज ओल्ड इनके ट्रेडिशंस हैं, इनकी रूट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, और उन्हीं को फिर हम अडॉप्ट करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड. तो मेरी जो इसके अंदर एक अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. आई फील यू नो दैट क्रिटिकल थियरी इज सॉर्ट ऑफ मोर एडिक्वेट. अब उसके देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट. मुझे लगता है रियलिज्म और लिबरलिज्म जो है वो तो बहुत, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, कि वो बहुत एक एक्सेप्ट कर लेती हैं सिस्टम को एज इट इज, और फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं. दे डोंट आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन कि वो सिस्टम आया कहाँ से. ठीक, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, कुछ कंट्रीज जो हैं वो पावर के पीछे हमें भागते हुए नजर आते हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं बिल्कुल ही नजर आते हैं, देर फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर इंटरनल सिस्टम्स, ऑन डेवलपमेंट, एंड दे प्रायोरिटाइज दैट ओवर फॉर एग्जांपल मिलिट्री एंड डिफेंस. सो देन एट द सेम टाइम यू सी डिफरेंट अदर कंट्रीज विच आर ओनली रनिंग आफ्टर यू नो मैक्सिमाइजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. सो वॉट एक्सप्लेन्स दैट? इसका मतलब है कि हर स्टेट सेम नहीं है, और हर स्टेट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट जो है, या फिर डिफरेंट तरीकों से उन इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है. तो मुझे लगता है कि हम सबको, यू नो, फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को, यू नो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल थियरी, एंड वी नीड आर स्कॉलर्स, आर रिसर्च टू अडॉप्ट दैट थियरी इज वेल. क्योंकि क्रिटिकल थियरी बेसिकली क्या करती है कि इट आस्क्स दीज क्वेश्चंस के किसकी इंटरेस्ट सर्व हो रही हैं, किसके पास पावर है, किन की वॉइसेज हैं जिनको साइलेंस किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इस दुनिया को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टम मोर इक्वालिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल बेस्ड है, जहाँ पे जस्टिस है या नहीं. तो आई बिलीव दैट इट गिव्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, एंड इट आंसर्स अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी IR आई कहाँ से है, और ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू नो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. So you've already mentioned constructivism. I will just go one step ahead and I will mention postcolonialism. And postcolonialism is a theoretical framework which I have adopted in my research. So what it basically says is ki agar aapne duniya ko abhi understand karna hai to aap history ko dekhein, aap legacies of colonialism dekhein, which you know all of us actually in Pakistan are aware of, because you know we have been a formal colony ourselves. British jo the wo rule kar rahe the Indian subcontinent ke upar, aur ek set kism ka pattern jo tha wo unhone introduce kiya, aur uske baad wohi system jo hai wo humne follow kiya even when they left. So what post-colonialism says is that it is very relevant ki aap international politics ko un legacies ke through explore karo jo colonialism aur imperialism ki hai. So they are not just something of the past, they shape today's global inequalities, patterns of conflict and all the categories that we even used to study aaya. जैसे आप देखो डेमोक्रेसी के ऊपर कितना फोकस है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट्स जस्ट वन एग्जांपल. आप और देखो हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इकोनॉमिक यू नो कैपिटलिज्म के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं एंड वी यूजली डोंट नो वेयर दीज आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम. और कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट समहाउ हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड वी डोंट लुक एट दोज हिस्टोरिकल things which have been a part of our history and which have been a part of you know our development, and then we can't really understand this. Theek hai, so ye jo international system hai isko post colonial scholars kehte hain ki this has been built through processes of conquest, resource extraction, cultural domination, etc. Just briefly agar iski hum koi example dekh le to aap dekh sakte ho hum acha Israel Palestine war ko hum dekh rahe hain, agar hum usko sirf as a security issue ek to explain kar sakte hain ki you know it is it just a security issue or is there you know a deeper sort of a problem or underlying issues there. Jaise I will link it you know with the colonial history, in the sense ke division of land kaise hui, displacement of population kaise hui, wo sari Balfour declaration ke sath linked hai jo ke colonial practices hain British ki. So you know you need to understand ke ye kis tarah se problems develop hui. Isi tarah agar aap अफ्रीका को देखो, अफ्रीका यू नो इज़ अ वेरी रिच कॉन्टिनेंट इन द सेंस ऑफ दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, येट आप देखते हो कि इट इज़ द पुअरेस्ट यू नो मोस्ट अनस्टेबल मोस्ट यू नो वीकली गवर्नड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो पोस्ट कोलोनियलिज्म हमें ये बताएगी कि यू नो कोलोनियल पावर्स ने कैसे रिसोर्सेज वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए और फिर किस तरह से अपने आप को डिवेलप किया. एक इतनी फेमस बुक है हाउ यूरोप अंडर डिवेलप्ड अफ्रीका. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दीज थिंग्स दैट यू नो ये जो रिसोर्स कर्स है अफ्रीका की, it is not just something which is you know brought upon them by themselves, it is something which has been imposed on them, it is a post-colonial legacy of exploitation or underdevelopment. Aur ye hame kya cheeze hain, ye sari examples batati hain ki there is a way forward. But thodi si ek critical theory ki ye advantage hai ki wo aapko ye bhi batati hai ki hum system ko theek kar sakte hain aur kaise kar sakte hain. So for example post-colonialism kahegi ki aap decolonize kare, जो आप लोगों के लिए नई चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको छोड़ें और जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उनको अडॉप्ट करें. इवन लाइक माय करंट रिसर्च, जस्ट ब्रीफली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लुकिंग एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव. तो मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये डिस्कवरिंग दिस एंड आई एम फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट एवरी डे कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, वो कोलोनियल टाइम्स से चलते आ रहे हैं और हमने उनको चेंज नहीं किया है और हम अभी तक उसी तरह से मैनेज करते हैं वाटर को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हमें बता के गई. बट दे वर देयर फॉर अनदर पर्पस एंड वी आर अ स्टेट एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल, यू नो दे वर देयर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, जो भी हम एक टेम्प्रेरी रूल के साथ एसोसिएट करते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज करो और स्टडी करो तो आप लॉज को, पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को डीकॉलोनाइज करो और आप उन प्रोसेसेस की तरफ जाओ जो आपके कॉन्टेक्स्ट की तरफ ज़्यादा सूटेड हैं. सो देयर इज होप फॉर अ चेंज.
0: थैंक यू सो मच मिस, और आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में हर प्रॉब्लम के पीछे कॉलोनियल लेगेसी है, बिकॉज एवरी कंट्री वाज अ कॉलोनियल एट सम टाइम.
1: इट्स नॉट दैट, यू नो, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल और जस्ट लर्न द एग्जांपल और टेक अवे कि यही है कि सारी गलती उनकी है. आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. वी शुड रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स एज वेल, बट आई मीन देर इज अ लेगेसी एंड इट शुड टेल यू कि आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट डिफ्लेक्ट कर दें ब्लेम सारा, दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग.
0: थैंक यू सो मच मिस, एंड आपके इतने डिटेल्ड आंसर से मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरी डिटेल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ IR, नॉट जस्ट बेसिक थ्योरीज. तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग टू अस, एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस आयशा नसीम टू बींग आवर गेस्ट फॉर टूडे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड लर्निंग टू होस्ट हर. वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. FM 92.6 UCB की दुनिया. अल्लाह हाफिज़.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: फर्क पड़ता है जब कानून नाफिज करने वाला हर जवान हर इदारा अपनी कौम को मनशियात से बचाता है और हर शहरी 1415 पे मुकम्मल राजदारी और जिम्मेदारी से मनशियात फरोशों की इत्तला देता है। फर्क पड़ता है हमारी हिम्मत से, हमारी कॉल से। 1415 मनशियात अब नहीं।
1: लेट्स गेट स्ट्रेस फ्री। ट्यून इन टू FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Ladies and gentlemen, we are live now.
1: Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.
2: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
3: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।

कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।

0: किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगाम मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।
1: टर्न ऑन द रेडियो एंड ट्यून इन FM 92.6 UCB दुनिया।

0: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। BTP 92.6
1: बोरियत को भगा दो।

0: अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।
1: BTP 92.6 बोरियत को भगा दो।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
3: Assalamu alaikum everyone, this is Muskan Zahra and welcome to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I welcome you all to the faculty hour of Faculty of Humanities and Social Sciences. Today I have a special guest with me, Miss Aisha Naseem, who is a teacher of international relations at our department. Assalamu alaikum miss, kaisi hain aap?
4: Wa alaikum assalam Muskan, I'm good, thank you for inviting me to your show today.
3: Okay, would you tell us about your experience in UCP? How long have you been there?
4: So I joined UCP back in 2018. My experience has been great. I think I've seen it evolve a lot. जब मैंने join किया था UCP, तो बिल्कुल हमारा department जो है उस time पे start हो रहा था. So it was the first time ever that they were offering a program of international relations and political science. So first graduate, you know, हमारा batch आया था उस time पर, वो अब graduate कर गए हैं, you know, they're working now. So of course it's been a rewarding journey. It's been a long but rewarding journey.
3: Okay, I think your experience was very good. Would you tell me which courses are you teaching currently?
4: So I taught a number of courses here. International relations, introductory ek course hota hai hamara, uske baad political science ke different courses hote hain. I've taught courses in security studies, defense and strategic studies, globalization, theories of IR. So right now in this semester I am teaching introduction to international relations, introduction to political science and peace studies.
3: Okay, which subject is more favorite of yours personally?
4: I think that's very difficult to answer. But let's just say I really enjoy Intro to IR because, you know, it's first semester students and they hardly have any idea about what IR is, what it entails. So bilkul ek blank slate ko jab aap introduce karte ho ideas, you know, which are so relatable to what is happening around us, it kind of, you know, it's always interesting to see how they respond to it and how they're always saying, oh, we understand, this is what is happening around us. So I think the most enjoyable course in that sense would be the introductory IR course.
3: That's good to know. So taking from your answer, most people aren't familiar with what IR is actually. So how would you describe IR to someone who don't know about it?
4: So as I said, I completely agree with your statement that not many people know what we study in IR, which is actually kind of, you know, paradoxical as well, because IR is all around us. Agar aap dekho, duniya ke andar itne sare events ho rahe hain on a daily basis. You know, right now, if we see the world around us, there are actual active wars going on, and there are so many events, you know, in the sense of economy, domestic politics, you know, events that shape each of us as a Pakistani, you know, when we look at our political system and what it is providing for us. So in that sense, you know, IR is something that is very easy to relate to, and yet it is difficult to define in that sense because it includes so many things. So very bahut basic level pe shayad aapko ek definition agar dena chahun, just to explain to a layman or to somebody who doesn't know what it is, it would just be a study of how the world works across borders. So you know, itne big questions hain duniya ke andar ke countries cooperate kyun karte hain, countries jo hain wo wars aur conflicts ke andar indulge kyun karte hain, duniya mein organizations kya kar rahi hain, economies kaise interact kar rahi hain, cultures kaise interact kar rahe hain, ideas kaise interact kar rahe hain. So hum आई आर के अंदर इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं एंड वी जस्ट डोंट लिमिट आर सेल्व टू स्टेट्स. वी ऑल्सो रियलाइज दैट यू नो आई आर हैज़ बिकम मच ब्रॉडर ओवर टाइम. सो आई आर के अंदर आप एम एन सीज के बारे में भी पढ़ते हो, आप एन जी ओज के बारे में भी पढ़ते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन जैसे यू एन है, जैसे इतनी सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यू नो टू अ लार्ज एक्सटेंट सोशल मूवमेंट्स, यू नो इवन इन सेंस आप देखते हो दुनिया के अंदर इस टाइम पे क्लाइमेट चेंज कैंपेन्स चल रही हैं. ऑल ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ आई आर बिकॉज दे टेल अस अबाउट वॉट द यू नो वॉट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट. सो इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड, यू नो नॉट जस्ट विद इन योर ओन कंट्री, थ्रू आउट द ब्रॉडर वर्ल्ड इज बेसिकली यू नो फॉल्स इन द रियल्म ऑफ आई आर.
3: Thank you, teacher, for giving us a brief introduction of IR. I'm sure students who don't know about it will be interested to learn. And now, my question is, with so many global events folding every day, how does studying IR helps us make sense of what's happening around us?
4: So we have tools in IR. Just like, you know, in every subject, you have various tools which help you understand, you know, how to make sense of the various things that are happening. इसी तरह आई आर में हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, जैसे हम लेवल्स ऑफ एनालिसिस को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर डोमेस्टिक आ जाता है, इंडिविजुअल आ जाता है, सिस्टेमिक आ जाता है. सो वॉट वी डिस्कस इन दैट इज के एक इंडिविजुअल लेवल पे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लीडर है तो वो किस बेसिस पर डिसीजन मेकिंग कर रहा है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि एक लीडर जो कि डिसीजन मेकिंग के रोल पर है, ही इज़ द वन और शी इज़ द वन हु इज़ मेकिंग those decisions. So it does it come down to that person, you know, their own experiences, their own personality, their own, you know, whatever they have been through and whatever the agenda they have put forward. Personality is very important. So even if you look at the world today, if you just compare contrasting personalities, top US ke presidents ko dekh lo, you know, Obama had a different personality. You want to understand, you know, foreign policy decisions that, you know, US undertook during Obama's presidency. If you're using an individual level of analysis, you would see how his personality shaped that. Similarly, you know, Trump has a different personality. Joe Biden has a different personality. So you look at their own personalities and how that influences decision making. So is tarah hi different levels aur hain. Hamare paas ek domestic level aa jata hai jo hame batata hai ki ek state ki internal characteristics kya hain. So वो स्टेट पावरफुल है, वीक है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, वो उसकी इकोनॉमी जो है वो कितनी ज़्यादा ओपन है, कितनी ज़्यादा इंटरट्वाइंड है दुनिया के साथ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके डोमेस्टिक फीचर्स हैं. सो यू नो दे ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ अ स्टेट इज़ एक्टिंग इन द वर्ल्ड. उसके अलावा जो मैं आपको कही थी, थर्ड एक कॉमन लेवल है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो सिस्टेमिक है. दैट टेल्स अस के अलायंसेस क्या हैं दुनिया में, पोलैरिटी क्या है दुनिया में, कितनी सुपर पावर्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उनके आपस में रिलेशंस कैसे हैं, स्टेट्स के अलायंसेस कैसे हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं. बिकॉज इफ़ यू सी, कंट्रीज विल टेंड टू फॉलो देयर एलाइज एंड स्पेशली इफ देयर इज़ अ यू नो वीक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देयर. सो वो भी बहुत इन्फ्लुएंस करती है हमारी आयर की अंडरस्टैंडिंग को, इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को.
3: थैंक यू सो मच मिस फॉर दिस इनसाइटफुल आंसर. अब हम सवाल जवाब के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: Welcome back, everyone, to FM 92.6 UCP Ki Duniya. Today, I'm here for Faculty Awards, and hamare sath hamari guest hai Miss Aisha Naseem. And we were discussing ke IR ke andar agar hum dekhen to global events ko hum kaise understand kar sakte hain ki hamare aas pas jo kuch ho raha hai usko IR ke view se kaise explain kar sakte hain. Okay, Miss. Next, my question hai ki jaise state mein central government hoti hai, but IR mein koi central authority nahi hai, to decision making kaise hoti hai aur problem को सॉल्व कैसे किया जाता है?
4: अच्छा, सो मुस्कान, दिस इज़ अ वेरी कोर यू नो इशू और टॉपिक इन आईआर, जो हम बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पर जिस चीज़ के साथ ग्रैपल करते हैं, और फिर लेटर ऑन आप देखते हो कि हर प्रॉब्लम, हर इशू को टैकल करने के अंदर ये यही क्वेश्चन जो है ये अराइज करता है. बिकॉज यू आर वेरी राइट कि हमें एक डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर क्लियर कट एक गवर्नमेंट नज़र आती है जो कि हमारे लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, एंड व्हेन वी डोंट फॉलो दोज रूल्स तो एक सिस्टम है जो हमें पनिश करता है, यू नो, कोर्ट सिस्टम, एक पुलिस फोर्स एटसेट्रा. बट इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी ऑब्वियस. हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, आईआर की एक टर्म है एनआरकी, एंड एनआरकी इज बेसिकली रिफर्स टू दिस फिनोमेना दैट व्हेन देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, यू नो, व्हाट हैपेंस एंड यू नो हाउ डू स्टेट्स इंटरैक्ट. सो आप इसके अंदर देखोगे कि क्लियर कट है कि देयर इज नो अथॉरिटी. यू नो, यू सी स्टेट्स ब्रेकिंग लॉज, एंड यू नो, जिसको हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं उसको स्टेट्स ब्रेक भी करती हैं, लेकिन they get away with it, and you know, some get punished and some don't get punished. So aisa koi universal hame system nahi nazar aa raha jo ki ek local government for example karti hai. And yet despite that hum ye bhi dekhte hain ki cooperation ho rahi hai, kuch cheezon ke andar law of making jo hai wo ho bhi rahi hai aur usko follow bhi kiya ja raha hai. To ye jo collective goods problem hai, ye एक सेंट्रल आइडिया है जो कि आईआर ने, आप कह लो इकोनॉमिक्स से भी हमने बोरो किया हुआ है. आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द बिगिनिंग कि आईआर एक बहुत इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है. तो जहां पे आप आईआर के बारे में पूछ रहे थे कि आईआर क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आईआर इंटरडिसिप्लिनरी है. दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफरेंट आइडियाज को हम इकोनॉमिक्स से भी बोरो करते हैं, सोशियोलॉजी से बोरो करते हैं, साइकोलॉजी से बोरो करते हैं. वो जो मैं अभी आपको इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस बता रही थी, इट इज़ सो मच लिंक टू साइकोलॉजी एंड psychology of leaders. So coming back to this problem that you just asked about, to wo ek collective goods problem hai jiski ek basis economics ke andar bhi hai ki aap kaise ensure karo ki wo cheeze jo sabke fayde mein hai उनको स्टेट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि यू नो उनको इसके अंदर कुछ स्टेट्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट ना भी कर रही, राइट? जैसे फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल देख लेते हैं. अब आप देखते हो कि क्लाइमेट चेंज, यू नो, बिकॉज इट इज़ सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ एंड इट इज़ बींग डिस्कस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, उसका क्या इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, एटसेट्रा. सो इट्स समथिंग दैट इफेक्ट्स ऑल ऑफ अस. अब यू नो द एयर दैट वी breathe is for everybody, right? हम वहाँ पर तो वो borders नहीं बना सकते air के अंदर जो हमने land के अंदर बनाए हुए. So it's like every country is going to contribute, you know, with the level of pollutions, etc. तो वो हर country उसके अंदर contribute कर रहा है. लेकिन कुछ countries ज़्यादा contribute कर रहे हैं और कुछ countries कम contribute कर रहे हैं. But it is a problem that affects everybody, right? So अगर आप for example कह दो कि नहीं, मैं तो इतनी production नहीं कर रहा, and so I don't need to, you know, do something about it, it's not really there because it is going to affect you. आप पाकिस्तान की example देख लो. अभी ये जो हमारे floods आए थे recent, उसके अंदर हमारा यही एक you know हमारा official narrative था that we have not contributed as much to global warming, but you know these floods have been caused by global warming and we have paid the cost of it, in the sense ke kitni lives lose hui hain, kitni hamari economy suffer ki hai. So yahi baat aagi ke chahe koi state uske andar contribute kar rahi ho, chahe na contribute kar rahi ho, aapne wo provide karna hi hai good, aur aapne ensure karna hai ki sab countries jo hain wo uske andar contribute kare, kyunki it is a global thing. And if for example one state says ke nahi ji hum to नहीं इसको फॉलो करेंगे, तो वही बात है, एयर कॉमन है, इट इज स्टिल गोइंग टू इफेक्ट other people. So how are you going to deal with it? Iske bhi basic principles hain. Hum bahut basic level pe dominance padhte hain. Principle of dominance usko kaha jata hai. Phir principle of reciprocity hai. Principle of, you know, identity hai. Briefly, I'll just mention ki in sab ke andar kya hota hai and then we can move on. Dominance ka principle kehta hai ki jo powerful states hain, wo less powerful states ko, you know, dictate karti hain. So jaise hume, for example, different countries kahein ki you should do something about climate change and because a powerful country is saying it, we will follow it. ठीक है, वो डोमिनेंस होगी. रेसिप्रोसिटी होगी कि वो हमें दूसरे कंट्रीज को इंसेंटिव दे दें कि जी अगर आप ये करेंगे तो हम आपको ये बेनिफिट देंगे. सो आप हमारी बात माने, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे. सो वो रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल है कि तुम भी करो ये, तुम ये चीज करो, मैं ये चीज कर रहा हूं, तो एंड वी विल कलेक्टिवली, यू नो, बेनिफिट फ्रॉम इट. और देयर इज आइडेंटिटी. यू रियलाइज दैट, यू नो, देयर इज समथिंग विच यूनाइट्स यू, विच इफेक्ट्स एवरीबडी एंड यू कॉन्ट्रीब्यूट टू इट. सो ये प्रिंसिपल्स हमें एट वर्क नजर आते हैं इन एवरीथिंग, in every event, in every issue that is going on. And somehow, one way or the other, in principles ko use karke, hame dunya mein nazar aa raha hai ki states are cooperating and interacting positively on various issues that affect all of them.
3: क्योंकि मिस देखें, आपकी बात से मुझे याद आया कि ब्रिक्स में इंडिया, रशिया, ब्राज़ील सब एक साथ मिलके अपनी ट्रेड और इकोनॉमिक बेटर करने के लिए काम करें. हालांकि चाइना के इंडिया से प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया के रशिया से भी हो जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वो अपनी इकोनॉमी बेटर करने के लिए एक साथ मिलके काम कर रहे हैं.
4: सो दैट्स राइट, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि देयर इज समथिंग व्हिच इज यूनाइटिंग यू, राइट? कोई कॉमन इंटरेस्ट है जिसको आप फाइंड कर सकते हो और आप फिर यू नो वन स्टेप फॉरवर्ड. अगर हम एक लिबरलिज्म की थियरी है आईआर के अंदर उसकी तरफ आ जाए, तो वो यही कहती है कि कंट्रीज का अपना भी फायदा है कि वो आपस में ट्रेड करें, इस तरह की अलायंसेस बनाएं जैसे कि आपने ब्रिक्स की एग्जांपल दी, बिकॉज यू नो इट इज इन एवरीबडीज बेनिफिट. तो अगर आपके कोई एरियाज ऑफ कंटेंशन भी हैं, अगर कोई एरियाज ऐसे भी हैं जिसके अंदर आप क्लैश कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप आपस में इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करोगे, ट्रेड करोगे, उसका फायदा आप दोनों को होगा. सो इट्स नॉट अबाउट यू नो हु गेन्स मोस्ट, इट्स जस्ट अबाउट fact that you should look there at the fact that you are gaining from it. So isliye hum apni interest ki baat karte hain ki ye bhi hamari interest mein hai ki hum aapas mein is tarah ke blocks banaye aur trade kare. This is beneficial for individual states that are a part of it.
3: Thank you so much miss, aapne bahut se points clear kar diye mere bhi aur I'm sure jo audience hai unko bhi acche se samajh aa gayi hogi. And now we will take another break. Sunte rahiye FM 92.6 UCB ki.

0: Welcome back, everyone. You are listening to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I have Miss Aisha Naseem with me, and we were discussing ke agar state mein koi central authority nahi hai, to phir decision making kaise hoti hai. And we had a very insightful discussion. Hume bahut si cheeze clear hui. Now, Miss, aapne liberalism ki baat ki thi. So, usi se mujhe theories yaad aayi because I have also studied approaches and theories of IR. To aapko kya lagta hai ki kaun si theory most helpful hai understanding today's events?
1: So this is a very relative question, ठीक है? So इसका एक कोई जैसे fixed answer जो है वो नहीं है. So let me think about which theory, for example, I would answer as being most relatable. Why don't you tell me, Muskan, since you just mentioned कि आपने भी theories पढ़ी नहीं है, what is your approach towards different theories that you've studied? And which one do you think is most adequate?
0: Okay, first of all, realism ko bahut zyada relate kiya jata hai anarchy se, aur uske core ideas bhi yahi hain. Phir liberalism, in dono ko dominant samjha jata hai. But jab when I studied constructivism, to tab maine dekha ki wo world ko bilkul objectively nahi dekhta, ekdam different tarike se perceive karta hai. For example, ki agar aapke samne ek chair hai, to constructivist ke according हर किसी का अपना ओपिनियन होगा कि आपने एक चेयर देखी, बट जब आप इमेजिन करोगे तो आप उसको डिफरेंट, हर कोई डिफरेंटली इमेजिन करेगा कि कोई उसे मूविंग चेयर के तौर पर इमेजिन करेगा, कोई क्लासरूम चेयर के तौर पर इमेजिन करेगा. तो ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कैसे परसीव किया. और इसमें मैं एग्जाम्पल दूंगी कि जैसे कंट्रीज लाइक जापान और नॉर्वे, वो लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाते, हालांकि बाकी कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग वो कहेंगे कि दुनिया में अनार्की है और हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए. बट उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी सेट कर लिया, उनके इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज उनकी एक हिस्ट्री रही है, उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्बिंग्स को लेकर कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स परसीव नहीं करेंगे. आई थिंक कंस्ट्रक्टिविज्म हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि किसी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है, और हमें बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए.
1: अच्छा, बिल्कुल. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी. सो क्रिटिकल थ्योरी जो है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक, जैसे आपने शुरू किया कि हम ज्यादा फोकस करते हैं रियलिज्म के ऊपर, लिबरलिज्म के ऊपर, एंड इन फैक्ट वी कॉल देम द मेन स्ट्रीम थ्योरीज. सो वो वही थ्योरीज हैं जो कि बहुत अरसे से आईआर का पार्ट हैं, और उनको बहुत अरसे से, मतलब सेंचुरीज ओल्ड इनके ट्रेडिशंस हैं, इनकी रूट्स हैं, फाउंडेशंस हैं, और उन्हीं को फिर हम अडॉप्ट करते हैं इन एक्सप्लेनिंग द वर्ल्ड. तो मेरी जो इसके अंदर एक अप्रोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. आई फील यू नो दैट क्रिटिकल थियरी इज सॉर्ट ऑफ मोर एडिक्वेट. अब उसके देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर दैट. मुझे लगता है रियलिज्म और लिबरलिज्म जो हैं वो तो बहुत, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि वो बहुत एक एक्सेप्ट कर लेती हैं सिस्टम को एज इट इज, और फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं. दे डोंट आंसर दिस बेसिक क्वेश्चन कि वो सिस्टम आया कहाँ से. ठीक, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे, कुछ कंट्रीज जो हैं वो पावर के पीछे हमें भागते हुए नजर आते हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं बिल्कुल ही नजर आते, दे फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, ऑन देयर इंटरनल सिस्टम्स, ऑन डेवलपमेंट, एंड दे प्रायोरिटाइज दैट ओवर फॉर एग्जांपल मिलिट्री एंड डिफेंस. सो देन एट द सेम टाइम यू सी डिफरेंट अदर कंट्रीज विच आर ओनली रनिंग आफ्टर यू नो मैक्सिमाइजिंग देयर डिफेंस कैपेबिलिटीज. सो वॉट एक्सप्लेन्स दैट? इसका मतलब है कि हर स्टेट सेम नहीं है, और हर स्टेट जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट जो है या फिर डिफरेंट तरीकों से उन इंटरेस्ट को फॉलो कर रही है. तो मुझे लगता है कि हम सबको यू नो फ्रॉम द ग्लोबल साउथ डेवलपिंग कंट्रीज को, यू नो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, वी नीड टू फोकस मोर ऑन क्रिटिकल थियरी, एंड वी नीड आर स्कॉलर्स, आर रिसर्च टू अडॉप्ट दैट थियरी इज वेल. क्योंकि क्रिटिकल थियरी बेसिकली क्या करती है कि इट आस्क दीज क्वेश्चन के किसकी इंटरेस्ट सर्व हो रही हैं, किसके पास पावर है, किन की वॉइसेज हैं जिनको साइलेंस किया जा रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम इस दुनिया को डिफरेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि एक सिस्टम मोर इक्वालिटी के ऊपर फॉर एग्जांपल बेस्ड है, जहाँ पे जस्टिस है या नहीं. तो आई बिलीव दैट इट गिव्स अ मोर ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर, एंड इट आंसर्स अ लॉट ऑफ दोज क्वेश्चंस जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी आईआर आई कहाँ से है, और ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से जिनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, यू नो टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. So you've already mentioned constructivism. I will just go one step ahead and I will mention post-colonialism. And post-colonialism is a theoretical framework which I have adopted in my research. So what it basically says is ki agar aapne duniya ko abhi understand karna hai to aap history ko dekhein, aap legacies of colonialism dekhein, which you know all of us actually in Pakistan are aware of, because you know we have been a formal colony ourselves. British jo the wo rule kar rahe the Indian subcontinent ke upar, aur ek set kisam ka pattern jo tha wo unhone introduce kiya, aur uske baad wohi system jo hai wo humne follow kiya even when they left. So what post-colonialism says is that it is very relevant ki aap international politics ko un legacies ke through explore karo jo colonialism aur imperialism ki hai. So they are not just something of the past, they shape today's global inequalities, patterns of conflict and all the categories that we even used to study aaya. जैसे आप देखो डेमोक्रेसी के ऊपर कितना फोकस है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इट्स जस्ट वन एग्जांपल. आप और देखो हम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, इकोनॉमिक यू नो कैपिटलिज्म के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं एंड वी यूजली डोंट नो वेयर दीज आइडियाज़ आर कमिंग फ्रॉम. और कुछ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट समहाउ हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं एंड वी डोंट लुक एट दोज हिस्टोरिकल things which have been a part of our history and which have been a part of you know our development, and then we can't really understand this. Theek hai, so ye jo international system hai isko post colonial scholars kehte hain ki this has been built through processes of conquest, resource extraction, cultural domination, etc. Just briefly agar iski hum koi example dekh le to aap dekh sakte ho hum acha Israel Palestine war ko hum dekhe agar hum usko sirf as a security issue ek to explain kar sakte hain ki you know it is it just a security issue or is there you know a deeper sort of a problem or underlying issues there. Jaise I will link it you know with the colonial history in the sense ke division of land kaise hui, displacement of population kaise hui, wo sari Balfour declaration ke sath linked hai jo ke colonial practices hain British ki. So you know you need to understand ke ye kis tarah se problems develop hui. Isi tarah agar aap Africa ko dekho, Africa you know is a very rich continent in the sense of that it has a lot of natural resources, yet aap dekhte ho ke it is the poorest, you know, most unstable, most you know weakly governed part of the world. To post colonialism hame ye batayegi ke you know colonial powers ne kaise resources wahan se extract kiye aur phir kis tarah se apne aap ko develop kiya. Ek itni famous book hai How Europe Underdeveloped Africa. So it is based on these things that you know ye jo resource curse hai Africa ki, it is not just something which is you know brought upon them by themselves, it is something which has been imposed on them. It is a post colonial legacy of exploitation or underdevelopment. Aur ye hame kya cheeze hain, ye sari examples batati कि देर इज अ वे फॉरवर्ड. बट थोड़ी सी एक क्रिटिकल थ्योरी की ये एडवांटेज है कि वो आपको ये भी बताती है कि हम सिस्टम को ठीक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल पोस्ट कॉलोनियलिज्म कहेगी कि आप डीकॉलोनाइज करें, जो आप लोगों के लिए नई चीजें वर्क कर रही हैं उनको छोड़ें और जो चीजें वर्क कर रही हैं उनको अडॉप्ट करें. इवन लाइक माय करंट रिसर्च, जस्ट ब्रीफली आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लुकिंग एट क्लाइमेट चेंज फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव. तो मैं पाकिस्तान को स्टडी कर रही हूँ, तो मैं ये डिस्कवरिंग दिस एंड आई एम फाइंडिंग आउट मोर अबाउट इट एवरी डे कि हमारे जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, फ्लड मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, वो कॉलोनियल टाइम्स से चलते आ रहे हैं और हमने उनको चेंज नहीं किया और हम अभी तक उसी तरह से मैनेज करते हैं वाटर को जैसे ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज हमें बता के गई. बट देवर देयर फॉर अनदर पर्पस एंड वी आर अ स्टेट एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज पीपल. यू नो देवर देयर फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लॉयटेशन एटसेट्रा, जो भी हम एक टेम्प्रेरी रूल के साथ एसोसिएट करते हैं. सो द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीज़ों को रियलाइज करो और स्टडी करो तो आप लॉज को, पॉलिसीज को, इंस्टीट्यूशंस को डीकॉलोनाइज करो और आप उन प्रोसेसेस की तरफ जाओ जो आपके कॉन्टेक्स्ट की तरफ ज़्यादा सूटेड हैं. सो देर इज़ होप होप फॉर अ चेंज.
0: थैंक यू सो मच मिस. और आपकी बातों से मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया में हर प्रॉब्लम के पीछे कॉलोनियल लेगेसी है, बिकॉज़ एवरी कंट्री वाज अ कॉलोनियल एट सम टाइम.
1: नो, इट्स नॉट दैट, यू नो, लेट्स नॉट टेक द एग्जांपल और जस्ट लर्न द एग्जांपल और टेक अवे कि यही है कि सारी गलती उनकी है. आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग. वी शुड रियलाइज आवर ओन मिस्टेक्स एज वेल, बट आई मीन देयर इज अ लेगेसी एंड इट शुड टेल यू कि आप कैसे उसको करेक्ट कर सकते हैं. इट्स नॉट डिफ्लेक्ट कर दें ब्लेम सारा, दैट वुड ऑल्सो बी रॉन्ग.
0: थैंक यू सो मच मिस. एंड आपके इतने डिटेल्ड आंसर से मुझे रियलाइज हुआ कि क्रिटिकल थ्योरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड वेरी डिटेल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ IR, नॉट जस्ट बेसिक थ्योरीज. तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर लिसनिंग टू अस एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू मिस आयशा नसीम टू बींग आवर गेस्ट फॉर टूडे. इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड लर्निंग टू होस्ट हर. वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. FM 92.6 UCP की दुनिया. अल्लाह हाफिज़.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

मौसीकी के सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.pk पर चेक करें।
1: Ladies and gentlemen.

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: के सुर और ताल,
1: सुर और ताल,
0: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
1: और तकरार,
0: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अब्बा मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है, बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।